0: 情報。
1: ジュージュー、ソルティジュージュー、カルナラヤニ、ラスクマー、バガー、レガンウェグ、ヨギー、ジャスティ、マイリパニー、タバー、ライ、ジュージュー、ガリ、アダニスロータ、タバー、ウ、ビショコ、コナ、コナバタ、ハミライ、ストロン、ガーニ、ガーノンサ、ラ、ビビンナマディン、プライガー、ティオパニー。ヨタマトリマディマイナ、タマイレ、アップマーファツウノンチャ、タマイレ、インターネットマーファツウノンチャ、タマイ、チェアバー、ブルネコサンダーママ、フリクエンシーツオーラスウノンチャ、UK マタマイレ、チェイ、ビビンナフリクエンシーマーファツウネガノンチャ、ネパーマフリクエンシーマーファツウネガノンチャ、FM、AM フリクエンシーアウマ、ラ、アプロ、オギアミリクラガリアリオ、インターネットカマディマタ、オイレタズン、スロタ、スマートスピーカーマパニ、ハミ、アイプギサギガソン、たまにこう、ジュンスケ、スマートスピーカー、バイバニー、アレクサ、オタバ、オネクネ、バイバニー、たまに、ワン、アロン、バイバニー、プレイ、BFBS、ゴルカ、レディオ、バンド、バイバニー、たまに、スマートスピーカー、レ、アムラバス、たまにこう、サム、レディー、ハルサ、キッチン、マウス、シティング、マウス、ワ、オネクネ、バニー、スタン、マウス、たまに、アミライス、ラン、ガーノンザ、サンプナ、ライ、ナマスカーニー、ハーディ、スワガー、ガリ、スロータ、プロバッカリナバス、カリクロム、サンチャー、バイレクサ、BFBS Gorkha Radio Brunei ko studio Brunei baata ra tapai hununcha ma Dhanraj Rai ko saath ma bihana ko 9 bajera 11 minute aba 12 minute jane aatyo ko samay bhaisakeko cha anya sthan ma ke kasto samay hudai cha yeso tapai le sundai hununcha ni yeso jankari garaunuhos mausam ko jankari garaunuhos aaja bihan ko tapai haruko activity kati thau ma bihan bhaisakyo kati thau ma saanj matrai hudai cha aba tyo anusar le tapai haruko ke gardai hununcha athawa aaja tapai le anya srotahar lai ke baadna saknuhuncha tapai ko geet baadna saknuhuncha tapai le bhognu bhaeko bhogai baadna saknuhuncha aaunuhos hami एक अर्काको कुराकानीहरु शेयर गरौ जानकारीहरु शेयर गरौ त्यसरी नहो हामीले चाहिँ अन्य कुराहरु थाहा पाउने आउनुस है सेरिया ब्रुनाईमा मौसम खासै परिवर्तन भएको छैन 32 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ अहिले अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस थियो अघि न्यूनतम तापक्रम दोस्रो र पहिलो घण्टामा भने अहिले 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम पनि बढेको छ र अधिकतम तापक्रम पनि 1-1 डिग्री सेल्सियसले बढेको छ मेघगर्जन सहित पानी पर्छ भनिएको छ तर अहिले सम्म पानी पर्ने चाहिँ मैले छाटकाट देखेको छैन आकाश खुला छ खुला भन्दा नि पुरै खुला त हैन अलिकति धुम्लिएको अवस्था भने चाहिँ छ तर पानी नै परिहाल्ने खालको चाहिँ छैन तर बदली भई आज पानी पर्ने संकेतहरु चाहिँ निकै प्रबल नै रहेका छन् श्रोता अब हामी गीत सुनिहालौ को आयो अझै धीमाले गाउनु भएको छ